0: This is Leica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: From Acocks Green to Small Heath, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
3: Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

Good morning. स्वागत है संगीत प्रेमियों का मनोरंजन की दुनिया में।

0: मंगलवार वर्ष 2026 के सितंबर महीने की 22 तारीख वक्त हो गया है हमारी आपकी मुलाकात का। हाँ, ब्रिटिश घड़ियों में 10:05 हुए हैं। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 तक बहन भाइयों मैं आपकी सेवा में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर रहूंगा, लेकिन सबसे पहले थैंक्स कहूंगा काजल को। हैव ए नाइस डे काजल, सी यू टुमारो मॉर्निंग। और आइए अब भाई खोलें अपनी डायरी, पढ़ें शायरी और शुरू करें आज का मनोरंजन प्रोग्राम। सताती है जुदाई हमको कुछ घंटे की भी, मगर ये भी सच है कि बढ़ाता है कदर तेरी ये तेरा जाके आना भी। कहा हर एक में खूबी है ऐसी जो कि तुझ में है, किसी का दिल चुराना और फिर दिल का जलाना भी। सताता है हमें हर वक्त फिर भी जहां से प्यारा है, बड़ा आनंद देता है हमें उसका सताना भी। जलाविया कि अब तो हर तरफ ढूंढे तुझे नजरें, पुकारे साथ मेरे तुझको ये मौसम आशिकाना भी।
1: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. London, Midlands, Manchester. This is the Leica Radio Network.
0: सताती है जुदाई हमको कुछ घंटों की भी, मगर बढ़ाता है कदर तेरी ये तेरा जाके आना भी। चला भी आके अब तो हर तरफ ढूंढे तुझे नजरें, पुकारे साथ मेरे तुझको ये मौसम आशिकाना भी। चला भी आके अब तो हर तरफ ढूंढे तुझे नजरें, पुकारे साथ मेरे तुझको मौसम आशिकाना भी।

0: भाई दिल धक धक तो करता होता था, ये टिक टिक करने लगा है आजकल। ओ मैडम, ये जो टिक टिक का पता है ये किसकी आवाज है? आपने अपनी पॉकेट में अपनी हाथ घड़ी रखी हुई है, इसको हाथ में पहनो, जेब में मत रखो, नहीं तो टिक टिक टिक टिक होती रहेगी। भाई ये क्या कहते हैं, बैक टू बैक संगीत के साथ प्रोग्राम का शुभारंभ हो चुका है। दिस इज मनोरंजन ऑन लाइका गोल्ड रेडियो एंड इट्स पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क। जहां जहां भी आप विराजमान हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, काम पर, दुकान पर, घर पर या अभी तक बिस्तर पर। कई लोग भाई आराम से उठते हैं, क्या जल्दी है, रवि शर्मा की तरह से 3:30-4 बजे उठने की क्या जरूरी है कोई पूछे तो। लोग पूछते हैं शर्मा जी इतना जल्दी आप उठते हैं, हाँ तो अक्षय कुमार तो आप बन नहीं पाए। अक्षय कुमार भी बहुत अर्ली उठते हैं, मोदी जी भी बहुत जल्दी उठते हैं, लेकिन वो मुझसे ये पूछते हैं कि इतना जल्दी उठ के आप करते क्या हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ो भाई। बहुत कुछ करना होता है, सुबह सुबह ही दिमाग ताज़ा होता है, ये सारा जो प्रोग्राम है ना ये सुबह सुबह तैयार हो जाता है। आपको बताऊं, चिंतन सबसे बढ़िया सूझता है प्रातःकाल में, सुबह में। और आपको ये भी बता दूं कि लोग इतना लिख के भेजते नहीं जितने मुझे क्रिएट करने होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई बात करता है तो उससे भाई एक सेंटेंस लेकर के उससे मिलता जुलता सा तैयार करना होता है। मुझे आइडिया मिलता है लोगों से बातें करने से, देखने से, सोचने से, घूमने फिरने से, वही आइडियाज मिलते हैं, लेकिन चिंतन तैयार करना होता है सुबह 4 बजे। एक ये होता है कि रात को जब आप सोते हैं, दिन भर की वो सारी बातें, वो खबरें, वो आसपास का माहौल और भाई वो चीज़ें जो घटती हैं वो आपके दिमाग में भरती चली जाती हैं। रात आप सोते हैं ना तो आप बिल्कुल अपने पास होते हैं, हाँ अपने पास। स्वप्न में भी आपके कोई और लोग आ जाते हैं डिस्टर्ब करने आपको, सपने की स्थिति छोड़ो, उससे आगे जो सुसुप्ति की अवस्था है बहनों भाई, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा के पास होते हैं, वो जो आपके भीतर है। अगर वो नहीं होता ना तो सांस कैसे चलती, आप तो सोए पड़े। दिल कैसे धड़कता, आप तो सोए पड़े हैं बिल्कुल डेड की तरह से, लेकिन सारा फंक्शन चल रहा है, सारा काम हो रहा है, तो भाई वो है हमारे भीतर, सारे सिस्टम को चलाता है। तो वहाँ बड़े शांत होते हैं, वो जो दिन भर की चिंताएं हैं, फिक्र हैं, परेशानियां सब खत्म जब सो जाते हैं। तब सुबह उठते हैं तो भाई बड़ी ताजगी होती है, अब फिर से भरने शुरू होते हैं, फिर से चिंताएं नज़दीक आती हैं। उससे पहले पहले हम परमात्मा को याद कर लेते हैं, उससे पहले पहले हम सृजन यानी सोचते हैं, रचते हैं, बनाते हैं, और ये दैट्स हाउ वी स्टार्ट। चलिए अब भाई आ गए हैं तो कुछ करके यहाँ से जाएंगे। आपको पहले सबसे हम पाउंड का रेट बताएंगे भारतीय करेंसी में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज एक पाउंड के बदले आपको दे रहे हैं 127.6 rupees. Yes, that's today's rate. 127.60 rupees for £1. But you can transfer via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. One performer. Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026. 29th October, Ova Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
2: London, get ready for an unforgettable night.
3: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
2: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
3: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
2: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
3: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
2: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner, Leica Radio Network.

0: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: वेरी गुड मॉर्निंग भाई, आप मनोरंजन प्रोग्राम सुन रहे हैं और अब वक्त हुआ जाता है समाचारों का। एक खबर जो चर्चा में है वो तो है बर्नहम और ट्रंप की मुलाकात। पहली बार

जायका रेडियो नेटवर्क। अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। चीन ने ईरानी एयरलाइंस पर अमेरिका की ओर से जो पाबंदी लगाई है उसके बारे में चीन ने उनको गैर कानूनी बताया है। अमेरिका की ओर से ईरानी एयरलाइंस पर लगाई गई पाबंदी को चीन ने गैर कानूनी बताया है, अवैध बताया है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि चीन हमेशा ऐसे एक तरफा प्रतिबंधों का, पाबंदियों का विरोध करता रहा है जिनके लिए इंटरनेशनल कानून का आधार या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी नहीं हो। भारत से आने वाली खबरों में यह बिहार की एक घटना है। जमुई यौन उत्पीड़न नाम से के एक सेक्सुअल टॉर्चर एक लड़की के साथ जो घटना घटी है उस पर खूब हंगामा हो रहा है। बिहार के जमुई में एक नाबालिग स्टूडेंट के यौन उत्पीड़न के मामले में आज मुख्य अभियुक्त नंदन यादव पुलिस मुठभेड़ के दौरान जख्मी हो गया है, गोली लगी है उसको। मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार ने बताया है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान नंदन यादव के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में और भी 5 अभियुक्त बताए जा रहे हैं जिनमें से 3 नाबालिग हैं जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। G7 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक साझा बयान जारी करके ईरान से कहा है कि वो यमन के हूती विद्रोहियों को हथियार देना और उनकी हिमायत करना तुरंत बंद करें। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की बैठक से इतर हुई एक हाई लेवल बैठक में G7 देशों जिनमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका ने सऊदी अरब पर हो रहे हूती हमलों की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। एशियन गेम्स 2026 महिला क्रिकेट फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 217 रन का टारगेट दिया था और भाई वो नहीं पार कर सकी। भारतीय टीम ने ये एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीत कर श्रीलंका को जो है हरा दिया है। सेलिब्रेशन जारी है और भाई ये लोग कहने लगे हैं कि पुरुषों की टीम से बड़ी प्रेरित हो रही है भारत की महिला टीम भी। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल मुकाबले में 147 रनों के विशाल अंतर से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एशियन गेम्स 2026 में ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है। भारत की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। 20 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेट खोकर उसने 216 रनों का स्कोर खड़ा किया। स्मृति मंधाना ने शानदार बल्लेबाजी की, 79 रनों की पारी खेली और शेफाली वर्मा इस बच्ची ने भी 48 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी। ऋचा घोष ने 49 रन बनाकर नॉट आउट रह करके टीम को जितवाया। तो साहब कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। गूगल पर 4,300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्या हुआ भाई, क्यों किया उसने? गूगल पर आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने लोकेशन डेटा के इस्तेमाल को लेकर 40.3 करोड़ यूरो यानी करीब 4,300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह आयरिश डेटा सिक्योरिटी की ओर से लगाए गए सबसे बड़े जुर्मानों में से एक है और ये जुर्माना उस जाँच के बाद लगाया गया जो 6 साल पहले टेक कंपनी के खिलाफ शुरू की गई थी। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियान ने पाकिस्तान को शक्तिशाली देश बताया है, लेकिन क्या कहा है? ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कल सोमवार को हमसे मुलाकात की तेहरान में। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच दो तरफा रिश्तों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। पेजेशकियान ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के सीनियर अधिकारियों के बीच लगातार बैठकों से ये साफ होता है कि इलाके में अमेरिका के बढ़ते हस्तक्षेप के बावजूद, दखलंदाजी के बावजूद मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि भाई पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी जो है वो ईरान का दौरा कर रहे हैं इस समय। मलेशिया में नौकरी की तलाश के लिए पहुंच रहे हिंदुस्तानी सिटीजन्स की बढ़ती तादाद के बीच हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल 30 दिनों की वीजा फ्री सुविधा का लाभ उठाकर कई इंडियन सिटीजन्स नौकरी की तलाश में मलेशिया जा रहे हैं। हाई कमीशन ने भारतीय सिटीजन्स को टूरिस्ट के तौर पर मलेशिया की यात्रा कर वहां रोजगार तलाशने या काम करने से सख्त तौर पर बचने की सलाह दी है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुछ मीडिया आउटलेट्स

0: को व्हाइट हाउस से बैन कर दिया है, जिनमें CNN, MS, Now और Politico। अमेरिका के प्रमुख मीडिया आउटलेट्स ने व्हाइट हाउस की टीवी पूल कवरेज नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल टीवी पूल कवरेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस प्रेसिडेंट के कार्यक्रमों की कवरेज साझा करते हैं, जिससे संसाधनों की बचत होती है। हूती हमलों के बीच सऊदी अरब की मदद के लिए ब्रिटेन अब आगे आया है। ब्रिटेन सऊदी अरब को यमन के हुतियों के हमलों के मद्देनजर डिफेंसिव एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की मदद देगा। प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा है कि सऊदी अरब की ओर से फौजी सहायता की जो रिक्वेस्ट आई है, उसके बाद हमने ये फैसला लिया है। डिफेंसिव एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का मतलब है कि एक लड़ाकू हवाई जहाज को हवा में उड़ते हुए ही दूसरे फौजी विमान से जो है ईंधन मिल जाता है, ताकि वो लंबे समय तक हवा में रह सके और उसे बार बार एयरबेस लोड करके ईंधन भरवाने की जरूरत ना पड़े। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के प्रांतीय मंत्री फजल शकूर खान के कथित अपहरण का मामला सामने आया है। उनके अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। वहां की सरकार ने दावा किया कि पेशावर में कुछ अज्ञात लोगों ने फजल शकूर खान को अगवा कर लिया है, उनका अपहरण कर लिया है। पेशावर में कल सोमवार को PTI के सीनियर लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने ये आरोप लगाया कि फजल शकूर खान को सादे कपड़ों में आए कुछ लोगों ने अगवा किया। उन्होंने दावा किया कि मंत्री की गाड़ी पर गोलीबारी भी की गई थी। अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेंसन ने ऐलान किया है कि 23 सितंबर से दुनिया भर में ईरानी एयरलाइन के लिए हवाई इलाके बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद तुर्की, इराक और जॉर्जिया ने ईरानी एयरलाइंस को अपने अपने मुल्कों में एंट्री पर रोक लगाने का ऐलान किया है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: लौट आइए अब संगीत की ओर और सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की सुरीली आवाज। कुछ वादे कुछ इरादे जो पहले नहीं कर पाए अब करके दिखा दे, इसी साल में या नए साल में, हर साल नया है, हर दिन नया है।

स्वागत है श्रोताओं का मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:04 हुए हैं। ये वक्त है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और बहनों भाइयों, आज के विचार के लिए हमें प्रेरित किया है श्रीमती सरस्वती शर्मा ने नॉरवुड ग्रीन से। सरस्वती जी लिखती हैं कि जहां बैठे हो ना, सही जगह है तुम्हारे लिए। जो बोलते हो अच्छा लगता है, तुम्हारा प्रोग्राम हमारा दिन बना देता है। पर जिस घटना का जिक्र किया है सुनिए। एक बार बहनों भाइयों, मशहूर गायक कलाकार सोनू निगम बहुत पुराने फटे कपड़े पहन करके, एक टूटा सा हारमोनियम लेकर के, पुराना, और मुंबई के ही एक चौराहे के पास एक सड़क पर बैठ गए और गुनगुनाने लगे। बिल्कुल उन्होंने वेश बदला हुआ था, वो काले घने बाल, परले उनमें मिट्टी, धूल, दाढ़ी बड़ी हुई, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते थे, और एक बड़ा पुराना सा चश्मा लगा रखा था। और भाई वो अपने गाने नहीं गा रहे थे, क्योंकि वो तो एकदम पहचाने जाते उससे, लेकिन वो कुछ ऐसा गुनगुना रहे थे जो अजनबी सा था, पर आवाज तो वही थी, अंदाज भी वही था। पर जब वो जमीन पर बैठे ये गाने गुनगुना रहे थे तो लोग पास से गुजर जाते, कोई कोई रुकता सुरीला समझ के, और कोई कोई तो पैसे भी फेंक जाता उनके सामने। सोनू कहते बड़ा अच्छा अनुभव था। ऐसी ही एक और घटना सरस्वती जी ने इंगित की है, बताया है कि ये 17 जनवरी 2007 की घटना देखो, बिल्कुल ऐसी ही। और भाई ये वाशिंगटन जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वहां के एक रेलवे स्टेशन पर, लोकल स्टेशन पर, एक बहुत ही मशहूर वायलिन बजाने वाले कलाकार, जिनकी इतनी डिमांड थी कि भाई उनकी जो है कॉन्सर्ट्स वो सोल्ड आउट हो जाती थी। और इतना ही नहीं, उनकी कम से कम जो टिकट की कीमत होती थी वो $100 होती थी, $100 से शुरुआत होती थी। और भाई इनका नाम था शायद समथिंग जे बेल। अब उनके साथ वाशिंगटन पोस्ट, जो वहां का बड़ा मशहूर न्यूज़पेपर है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। और भाई मिस्टर बेल को, जो इतना प्रसिद्ध था 2007 में, तो पूछिए मत, उसकी भाई प्रसिद्धि ऐसी थी कि लोग उसके वेबसाइट पर विजिट करने के लिए वेट करते थे। और कहते 11,000 2004 में उनकी वेबसाइट पर 1 घंटे में विजिट करने के लिए लोग लालय थे। अब देखिए उनके साथ वाशिंगटन पोस्ट ने क्या किया कि उनसे कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करना है। उन्हें कहा कि आप पुराने कपड़े पहन करके और स्टेशन के बाहर वायलिन बजाइए। अब भाई वही सोनू निगम वाला हाल, भाई फटे पुराने कपड़े और थोड़े से मैले कुचैले, और भाई स्टेशन के बाहर वो अपना वो महंगे से महंगा जो वायलिन, शायद दुनिया का सबसे महंगा वायलिन, उनका सबसे प्यारा साज, वो भाई लेकर किए और वो लगे बजाने। चश्मा लगा रखा था, वेश थोड़ा सा हल्का बदला हुआ था, लोग पहचान नहीं पा रहे थे, पर वायलिन वही, बजाने वाला वही जिसका दुनिया में डंका बजता था, पर जगह एक स्टेशन के बाहर। अब भाई समय भी था कोई, ये 8 बजे के बाद का, 8:15 का, लोग काम पर जाने के लिए बड़ी भीड़ जो है उस स्टेशन से गुजरती थी, लोग अपने काम पर दौड़ रहे थे, कोई वायलिन सुनने के लिए रुकता नहीं था। 1-2 सेकंड के लिए कोई रुक भी जाता तो भाई तालियां बजाने के लिए नहीं रुकता था आखिर तक। चिंतन, चिंतन। हुआ क्या, 1.25 घंटे में वहां से बताया जाता है कि करीब हजारों की तादाद में लोग गुजरे उस स्टेशन से, और गुजरने वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ एक आध ने ध्यान दिया भी, पर जल्दी से गुजरे, भीड़ गुजरी, और कईयों ने तो कुछ पैसे भी फेंके उनके सामने। वो आदमी जिसकी टिकट जो है कॉन्सर्ट्स की कम से कम $100 की होती थी, उस दिन उसके सामने $32 जमा हो गए, $32 उसने पैसे बटोरे। किसी को
चैरिटी में देने के लिए अपनी वायलिन बंद की। वाशिंगटन पोस्ट ने यह किस्सा अगले दिन अखबार में छापा। बताया कि आप कितने भी मशहूर क्यों ना हो, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए सही जगह चाहिए। थिएटर, सही मंच। और बहनों भाइयों, जगह का कितना फर्क होता है। वैसे एक कलाकार के रूप में ये मेरा अपना भी अनुभव है, लेकिन सरस्वती आंटी ने जिस तरह से बताया, कहती है जिस समय तुम ये चिंतन पेश कर रहे हो ना बेटा, इसी समय थोड़ी ही देर में मेरी ही हमनाम साध्वी सरस्वती दीदी अपना व्याख्यान शुरू करने वाली हैं। आज अभी थोड़ी देर में लक्ष्मी नारायण मंदिर नेविल क्लोज हाउंसलो में उनका प्रवचन शुरू होगा। तो ऐसे संत, ऐसे सात्विक पुरुष जो है मंदिर में जब बोलते हैं लोग सुनते हैं, भीड़ जमा होती है। कहते हैं अब 11:30 बजे से उनका व्याख्यान शुरू होगा, 1:30 बजे तक चलेगा, साथ में प्रसाद भोजन की व्यवस्था भी है। आज 22 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक उनके कार्यक्रम हैं। और कहती है यही सरस्वती दीदी जिस उस कलाकार की तरह से किसी ऐसे स्थान पर बोले लोग सुनेंगे नहीं, गुजर जाएंगे। और भीड़ के समय, काम के समय सही स्थान ना हो, सही उपयुक्त वातावरण ना हो, सही सुनने वाले कदरदान भी ना हो, तो व्याख्यान वेस्ट हो जाता है। कुछ एक के कान में पड़ेगा, कुछ सुनेंगे, कुछ याद रखेंगे, कुछ नहीं। लेकिन सही स्थान, एक सात्विक स्थान मंदिर, जहां साध्वी सरस्वती दीदी जी का प्रवचन अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा। सरस्वती आंटी शर्मा जी कहती हैं, मिसेस शर्मा, अगर सही जगह ना हो, सही मौका ना हो, सही स्थान ना हो, तो अपना टैलेंट बर्बाद मत कीजिए। टैलेंट की कदर नहीं होती है। तुलसी जी ने भी कहा है, आगत को हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां मत जाइए, चाहे कंचन बरसे में। सही जगह हो, सही कदरदान श्रोता हो, सही समय भी हो, तो आपकी कदर होगी। वरना भाई लोग आपको एक्सप्लॉइट भी करेंगे, टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, साज कितने भी महंगे क्यों ना हो, आप कितने भी मशहूर क्यों हो, लेकिन किसी ऐसी जगह पर जहां कदरदान ना हो, आप फ्लॉप हो जाएंगे। सही स्थान, सही समय, सही लिसनर्स या दर्शक, वहां जाइए।

0: सही स्थान, सही समय और सही रिस्पांस तब मिलता है जब सुनने वाले या देखने वाले सही डिजर्विंग लोग हों, सुपात्र हों, कदरदान हों। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख हमें नॉरवुड ग्रीन से श्रीमती सरस्वती शर्मा जी ने भेजा था, और आपका बहुत सुंदर संदेश साध्वी सरस्वती दीदी जी के व्याख्यान के वही विषय में जो आज अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो रहा है लक्ष्मी नारायण मंदिर में, हमारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती शर्मा जी। जो गीत हमने चिंतन के साथ सुनवाया, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म जहां प्यार मिले से गाने वाली आवाज लता जी की नहीं थी, किसकी थी बताइए? सुमन कल्याणपुर। चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन का हिस्सा बनता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन,
0: आइए अब लौटते हैं अपने कार्यक्रम के मूल रंग की ओर।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और बहनों भाइयों, कंपेटिटिव रेट क्या हैं आज की? लेट मी टेल यू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके गिविंग 127.6 रुपीज, इंडियन रुपीज फॉर वन पाउंड। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस लागू।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahuti. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन कनीश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम सिर्फ £1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ £29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू। और हर्जमेंट बटर घी 20 kg सिर्फ £10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
5: सिटी बॉन्ड ट्रैवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर्स 2026।
6: डिस्कवर कैलाश मानसरोवर, चारधाम, अमरनाथ, श्रीलंका विद अयोध्या, अयोध्या विद काशी, द गोल्डन टेम्पल अमृतसर एंड मोर।
7: बुक बिफोर द 31st ऑफ अक्टूबर एंड गेट £150 ऑफ कैलाश और £100 ऑफ एनी अदर यात्रा टूर।
6: ऑल्सो एक्सप्लोर 2026 क्रूजेज
7: फ्रॉम अलास्का टू द कैरेबियन, Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
8: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
9: Join legendary singer Kavita Krishnamurthy
8: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
9: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
8: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place.
9: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02 03 963.

0: get your product advertised across the largest Asian radio network. We are Leica Radio. Email sales at leicamedia.co.uk.
1: Back to back संगीत सुना आपने और अब एक संदेश भाई कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 पीएम ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार डाउनलोड एंड सब्सक्राइब टू द जियो हॉटस्टार ऐप नाउ जियो हॉटस्टार इज आल्सो अवेलेबल ऑन स्काई टीवी एज एन ऐप
2: जी है
3: लाइका रेडियो
0: फील गुड ट्रैक Brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: Aha, sitar suniye.

0: क्या कहना भाई इन गीतों का, सलील चौधरी का संगीत और लता जी की आवाज़। बहनों भाइयों, आपको जानकर शायद आप सुन चुके होंगे, बाली भाई भी चर्चा करते रहते हैं, सलील चौधरी सितार बहुत अच्छा बजाते थे। और सलील चौधरी साहब भाई लिखते भी थे, ये नहीं मालूम था, क्योंकि इस फिल्म जिसका ये गीत हमने आपको सुनवाया परख, इसकी स्टोरी जो है वो सलील चौधरी साहब ने लिखी थी, और फिल्म के संवाद जो है, डायलॉग्स, वो शैलेंद्र साहब ने लिखे थे जो गीतकार थे। बिमल रॉय ने बनाई थी और भाई डायरेक्ट भी उन्होंने की थी फिल्म ये, लेकिन चर्चा सलील चौधरी साहब का, उनके संगीत का और उनके सितार का। ये सितार वाली भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, कभी सुनाएंगे आपको, कि अमेरिका में एक म्यूजिक की शॉप पर, इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप पर कैसे सलील चौधरी साहब ने समा बांधा था। अब हमने चिंतन में कहा कि भाई जहाँ कदरदान ना हो वहाँ ना अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए, ना कुछ भाई जब सुनने वाले ना हो, लेकिन वो भाई दुकान ही संगीत के साजों की थी, वहाँ ऐसे कदरदान थे साहब कि सलील चौधरी साहब ने वहाँ सितार बजा करके दुकान में ऐसे देखने के बहाने कि भाई मैं ख़रीदना चाहता हूँ, लेकिन जब सुनी सितार पर उनकी धुन, ऐसा बजाया कि दुकानदार ने कहा मैं तो समझता था कि आप कोई राहगीर चलते हुए सितार देखना चाहते हैं, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है एक सितार भाई इतना बड़ा सितार, बढ़िया सितार, इतना महंगा सितार जो बरसों से उनकी दुकान में सजा के रखा गया था, कोई कदरदान खरीदार नहीं आया था, दुकानदार ने वो सितार सलील चौधरी को मुफ्त में भेंट कर दिया। छोड़िए फिल्मी बातों को, फिल्मी बातें बाली भाई लेके आएंगे। फिलहाल थैंक्स टू आवर क्लाइंट्स भाई हु ब्रॉट दिस टाइप ऑफ सॉन्ग्स।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Like Radio.
1: Like Extra podcast update.
0: और लाइक का एक्स्ट्रा पर हमारा एपिसोड 34, एपिसोड नंबर 34 इज देयर बाय अवेलेबल। टाइटल है मॉडर्न हैरेसमेंट, आधुनिक प्रताड़ना, बाय होस्टेड बाय दीप राजा। बहुत सारे विषय उस पर डिस्कस किए गए हैं, बातें की हैं। ही स्पीक्स टू संगीता पांडे ऑफ IIW और गायत्री शिनॉय, प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट फ्रॉम अबाउट मॉडर्न हैरेसमेंट। भाई ये विषय बहुत ही ज्वलंत है और आप इसको जरूर देखना चाहेंगे। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor. Actor Aftab Shivdasani. Playback singer Amantrika. And singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Birmingham, get ready as Surinderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Dirty Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed Dirty Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner, Leica Radio.
2: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Da New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Da New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
2: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.
3: वेरी गुड मॉर्निंग भाई, ये अगला गीत जो है हमें खबरों तक लेकर चलेगा, लेकिन इसी बीच स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। वत्सला, आपने ये क्या लिखा कि मैं आज चिंतन मिस कर गई? ये तो अक्षम्य अपराध है, आप बेंच में खड़ी हो जाइए। चिंतन मिस करने की चीज नहीं है। अब कोई बात नहीं, आप आर्काइव में से निकाल के सुन सकती हैं हमारे कार्यक्रम जो है, एक महीने तक आर्काइव में रहते हैं ना, वहाँ से निकाल के आप कभी भी सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं साहब। और नॉर्थ होल्ड में प्रकाश जी, कीर्ति जी, ज्योति गिरीश शाह भाई, आपको सितार वादन बहुत पसंद आया, सलील चौधरी जी का। नैना शाह सही कहती हैं कि कदरदान तो श्रोता चाहिए ही चाहिए। हम आपके कदरदान हैं रवि जी, कितने सालों से लगातार सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। निर्मला जी थैंक यू वेरी मच। जगदीश जी बुशी में, अनिल सोनी वियाना में, रंजन थैंक यू वेरी मच, आपको चिंतन बहुत पसंद आया। पम्मी, सुनीता और विजय, आपने एक बढ़िया बात लिखी, कहते हैं आज का चिंतन बहुत अच्छा लगा। भाई हमें वो घटना याद आ गई, आपने जो एमएलए के बारे में सुनाई थी कि वो वेश बदल करके और अपने ही दफ्तर के बाहर गए थे तो कैसे लोगों ने उन्हें वहाँ से भगाया, धक्के मारने लगे थे अपने ही ऑफिस के बाहर। भाई ऐसा कई बार होता है, आपको बताऊँ, हमारे एक नेता चौधरी बंसीलाल का नाम सुना होगा, उन्हें रेल मंत्री बनाया गया, तो वो रेलों की व्यवस्था और भाई वहाँ मुसाफिरों की सुविधाओं को देखने के लिए एक दिन बस साधारण वेशभूषा में, एक वो हरियाणा में चादर ओढ़ लेते ना, चादर ओढ़ करके और भाई ट्रेन में बैठ गए थर्ड क्लास डब्बे में, और प्लेटफार्म पर कुलियों से बात करते हुए और आम कर्मचारियों से बात करते हुए वो सारी पता लगा रहे थे। खैर उन्हें किसी ने पहचान लिया और उसके बाद भगदड़ मच गई, फिर उन्होंने भेद खोल दिया और वहाँ से निकल गए। और एक बात बताऊँ राज की, अपने साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। मैं भी भाई कहीं हम खेतों में शूटिंग कर रहे थे, मैं एक किसान का रोल कर रहा था, बहुत फटे पुराने कपड़े और भाई पगड़ी बांधी हुई थी। लंच का समय हुआ तो यूनिट ने कहा चलिए भोजन का समय हुआ, भोजन करने चलते हैं। गाड़ियों में बैठ के शहर में आए खेतों में से, और भाई खाना खाने के लिए उन्होंने कहा जी आप ये मेकअप बदलेंगे, ये कपड़े बदलेंगे, फिर पहनेंगे, बहुत समय बेकार होगा, अगर आप ऐसे ही चल सके तो हाथ धो के खाना खाइए वहाँ पर। अब मैं गया तो भाई मैंने कहा तुम ठहरो पीछे, मैं टॉप का रेस्टोरेंट था वो हमारे शहर का, शांतमय। और जब मैं अंदर जाने लगा तो साहब उन्होंने तो रोक दिया मुझे और कुछ कुछ कहने लगे, वो कहते हैं कि ये आपके मतलब का नहीं है। अरे साहब अंदर बोले मीटिंग चल रही है बड़ी इंपॉर्टेंट नेताओं की और ऑफिसर्स की। वो किसी एक ऑफिसर में से डिप्टी कमिश्नर थे वहाँ पर उस समय, आर के गर्ग, उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने कहा भाई इसको आने दे वरना ये हमारी मीटिंग बिगाड़ देगा। उसके बाद सारी यूनिट मुझे याद है ये घटनाएं भाई, और उन्हीं कपड़ों में मैंने भोजन किया और उसके बाद फिर वापस आके शूटिंग में जुट गए। यादें हैं सब समेट कर रखी।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: और बहनों भाइयों लीजिए समाचारों का समय हो गया है, सुनवाते हैं आपको खबरें और एंडी बर्नहम और ट्रंप की मुलाकात की खबरें।
2: Leicestershire, Coventry, Derbyshire, Wolverhampton and Shropshire.
4: This is Laika Radio.
2: Midlands.
5: Top stories this hour. Andy Burnham will meet Donald Trump for the first time later as world leaders gather for the UN General Assembly. The Prime Minister says he'll seek common ground, saying they found a connection during phone conversations. The Defence Secretary says it's in the UK's economic interest to let a British military aircraft refuel Saudi jets. Wes Streeting claims helping Saudi Arabia protect targets in Yemen from Houthi rebel attacks will help keep us safer. The Iran-backed militants have declared a blockade on Saudi shipping in the Bab el Mandeb Strait. Our defence and security analyst Michael Clark says it's significant.
6: It's not just fuel, it's fertiliser, petrochemicals, container ships, all going up to the Suez Canal. Bab el Mandeb is a really important strait, and if the Houthis have complete control of it, so they can decide who can come and who can go, then the world economy will continue to suffer more than it has done so far.
5: More bad news for the Chancellor, as the government borrowed more than expected last month. It jumped to £18.3 billion, dramatically cutting John Healey's headroom ahead of October's budget. The Lib Dem leader will join calls for a pause in the development of AI later. In his speech to his party's conference, Sir Ed Davey will compare the technology's risks to nuclear weapons. Piers Morgan's claimed he'll sue Earl Spencer over what he calls fabricated inaccuracies in his new book about Princess Diana. Buckingham Palace has already issued a rebuttal over allegations about the King in Swansong, which went on sale this morning. Royal commentator Jenny Bond says this is all likely to be taking its toll on His Majesty.
7: It is damaging, obviously, and you sometimes wonder how much more an elderly man can take. You know, he's had the Andrew scandal, he's had Harry and Meghan, he's had cancer. And now he's got this. I think it's very hard for the King to take it all.
5: And Henry Pollock signed a new contract extension with rugby prem champions Northampton Saints. The deal's worth a reported £400,000 a year. From Sky News, I'm Laura Say.
2: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
3: Very good afternoon to you. Weather-wise, well, आज के मौसम में वो कहते हैं कि भाई खूब सारी धूप है. Today it will be dry and warm, with sunny spells. Although some areas of cloud will drift in. कुछ areas में ना बादल आएंगे west से, पर थोड़ा छुटपुट रूप में. दोपहर बाद के मौसम में कुछ ऐसा ही है और आज रात को भी आसमान साफ रहने की संभावना है ज्यादा मैक्सिमम टेंपरेचर लंदन में 24 और मिडलैंड में 23
2: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410 This is Leica Radio across the Midlands.
8: Manoranjan with Ravi Sharma.
9: Leica Radio.
4: Leica Radio.
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the Leica Radio Network.
10: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ.

0: स्वागत है, वेलकम भाई, दर पे आए हो उस ऊपर वाले के। लेकिन ये गीत सुनकर भैरव भाई कुछ याद आ रहा है आपको? भाई ये गीत सुनकर आपको फिल्म लैला मजनू याद आएगी और उसकी हीरोइन याद आएगी, रंजीता, रंजीता कौर। नहीं याद? अरे भाई वो फिल्म में लैला मजनू में वो हीरोइन थी, अखियों के झरोकों से, पति पत्नी और वो, और भी कितनी फिल्में, दामाद, मेरी बीवी की शादी, भयानक, मेन तो अखियों के झरोकों से बड़ी मशहूर हुई थी फिल्म उनकी। और इसके अलावा भाई अरमान, धुआं, दर्द, क्रोधी, लापरवाह, राजपूत, बहुत सारी फिल्में उन्होंने थोड़े से समय में कर दी और बड़ी खूबसूरत वो हीरोइन थी। गुनाहों का देवता, खैर फिल्में बता करके याद दिलाना मेरा मकसद था। रंजीता बस बोर्न एज रंजीता कौर मिर्ज़ा, अपनी माँ का सरनेम जो उन्होंने अपने साथ रखा था। और रंजीता भाई कुछ फिल्मों में काम करके उसके बाद फिर वो जाने कहाँ खो गई। लेकिन रंजीता का आज जन्मदिन है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू मैडम रंजीता जी। और साहब पहला गाना जो प्रोग्राम में इस तीसरे घंटे के दौर में हमने सुनवाया आपको, तेरे दर पे आया हूँ, ये तो दूसरा गाना था। इससे पहले जो गाना था वो कौन सा गाना था? तेरा नाम लेके। हाँ, तू क्या जाने दिन रात हम पीते हैं तेरा नाम लेके।
1: ए जी, मेरा नाम लेके क्यों पीते हो? मैं इतनी अच्छी लगती हूँ।
0: पीने के बाद ही अच्छी लगती हो। नशे में अच्छी लगती है।
1: लेकिन मेरा नाम लेके?
0: और तेरा नाम लेके ऐस करके भाई, जब मैं काउंटर पे जाना ना, पार्टी चल रही है, फ्री दी दारू है, मैं बार बार लेने जाना, वो काउंटर से पूछता पाजी बहुत ज्यादा पी रहे हो तुसी, तो मैं फिर तेरा नाम लेके लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं, बीवी वास्ते लेके चले आ। तू क्या जाने दिन रात हम पीते हैं तेरा नाम। किशोर कुमार की आवाज़ में वो गीत था और रफ़ी साहब व साथियों की आवाज़ में आपने ये सुना, तेरे दर पे आया। और भाई ये तीसरे दौर का आगाज़ हो चुका है बैक टू बैक संगीत से। अब आपको एक बार फिर से हम ताज़ा रेट बताते हैं बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके के।
2: Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. इस समय जो रेट्स दे रहे नोट कीजिए। For £1 in Indian currency, they are giving 127.6 rupees, and that's maximum. You can transfer via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai
4: Leica Radio.
2: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
6: Jannan. For 15 years, Jannan has been part of your story across generations, across cultures, across every style. For everyday moments, special occasions, celebrations, and new beginnings. Because style has no age, no background, and no boundaries. 15 years of Jannan. For you, for us, for everyone. The Jannan and J. Dot anniversary sale, up to 70% off, starts on September the 25th online and on the 26th of September in stores nationwide.
3: દુબઈ માં પ્રોપર્ટી ખરીદવાની તમારી સફર હવે લેસ્ટર થી શરૂ થાય છે.
4: હેલો એવરીવન, ધીસ ઇઝ રિઝવાન સાજન, ફાઉન્ડર એન્ડ ચેરમેન ઓફ ડેન્યુ પ્રોપર્ટીઝ, અને અમે લાવી રહ્યા છે દુબઈ પ્રોપર્ટી એક્સપો મારિયટ હોટેલ લેસ્ટર માં 26-27 સપ્ટેમ્બર માં.
3: પોટ્સ રિયલ એસ્ટેટ તમને આમંત્રિત કરે છે ડેન્યુ પ્રોપર્ટીઝ સાથે દુબઈ પ્રોપર્ટી એક્સપો માં. મેરિયટ હોટેલ સ્મિથ વે લેસ્ટર, LE19 1SW, 26 અને 27 સપ્ટેમ્બર, સવારે 10 થી રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી. જાણો ગ્રીન્સ, બ્રીઝ અને શાહરૂખ વિશે. પ્રોપર્ટીઝ 1,90,000 pound થી, બુકિંગ માત્ર 5,000 pound થી. દુબઈ ની મફત ફ્લાય આઉટ ઓફર્સ વિશે પૂછો. દુબઈ ની તમારી સફર અહીં થી શરૂ થાય છે. શરતો લાગુ.
7: ખાખરા ક્રંચ, ભાખરી મંચ, ચિક્કી સ્વીટ, પાપડ બીટ, પિકલ્સ હીટ, યે હૈ જયમીન ફૂડ્સ કા વાઇબ ચેક.
8: એડ દેસી તડકા ટુ યોર રૂટીન વિથ જયમીન ફૂડ કે વેરાયટી ઓફ સ્નેક્સ, ખાખરા, નમકીન, પાપડ, પિકલ્સ, ચિક્કી, પોટ મીલ્સ એન્ડ મચ મોર.
7: જયમીન ફૂડ્સ, દેસી ક્રેવિંગ્સ, અવેલેબલ એટ નિયરેસ્ટ એથનિક ગ્રોસરી સ્ટોર્સ.
2: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
5: London, are you ready? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Hi, I'm Kajal from Leica Radio. Fancy owning a property in Dubai? Well, your Dubai property journey could start right here in Leicester. Join me live at the Dubai Property Expo with Pods Real Estate and Danew Properties at the Marriott Hotel in Leicester on September 26th and 27th from 10 a.m. till 8 p.m. I'll be there live on Saturday the 26th from 1 p.m. till 4 p.m. So come down, say hello and discover Greens, Breeze and Shahrukhs with properties from £190,000 and bookings from just £5,000. Plus, ask about free flyout offers to Dubai. Terms and conditions apply. Come and join me. Your Dubai property journey starts here.
9: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
2: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भैरव भाइयों, आपको ये तो याद दिलाने की जरूरत नहीं कि इस सप्ताह की कलाकार का नाम है कविता कृष्णमूर्ति. कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, उनके पतिदेव का सरनेम सुब्रमण्यम. और भाई, कविता जी और सुब्रमण्यम दोनों से एक साथ मुलाकात हुई कई बार. सुब्रमण्यम जी जो है वो बड़े मशहूर वायलिन वादक हैं, वायलिन बजाते हैं, और कविता जी क्या गाती हैं. लाइव सुनने का अवसर मिला है, आ रही हैं शो लेकर के लंदन में.

0: हो जाए, सब हो जाए, जरूर हो जाए, जुड़े रहेगा हमारे साथ, बहुत कुछ होगा।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: स्वागत है भाई अंतिम क्षणों में ये कार्यक्रम के। एक बजे तक हमारी आपकी ये मुलाकात जारी रहेगी। इसी बीच कुछ और संदेश आकर चिपक गए हैं हमारे सामने स्क्रीन पर। भाई स्टूडियो का माहौल कुछ ऐसा होता है जैसे आप कभी किसी हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठे ना, और आपके सामने कई स्क्रीन होते हैं। तो हमारे यहाँ भाई स्टूडियो में 5 स्क्रीन है, जो 4 तो बिल्कुल आंखों के सामने है।

0: वाले सॉन्ग लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें सुनी आपने, किसने सुनवाई है?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Leica Radio. This is Leica Radio Midlands. Now also available in Greater Manchester, Leeds and Bradford.
0: सामने आ गया है फिर से Southall Travel का संदेश, पैगाम आपके नाम।
1: Breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel वाले याद दिला रहे हैं भाई, अगर दुबई की यात्रा का कोई प्रोग्राम है तो इस डील के लिए इनका बहुत बड़ा नाम है। क्या कह रहे हैं कि we have very competitive holiday deals to Dubai. Contact us Southall Travel on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com.
3: ये है लाइका रेडियो।
4: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
5: India ke top 1% hosted by Anil Kapoor every weekend at 8 p.m. on Star Plus and Jio Hotstar.
6: Your brain now, play the game.
7: It's back, it's bigger and better.
5: ZTV and Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival.
7: Powered by Ram Jewelers and associated with UK Management College.
5: Join us on Sunday the 1st of November from 12 p.m. up until 8 p.m. at the Ram Garia Centre in Leicester. With shopping, food, entertainment and plenty more. It's a Diwali celebration you won't want to miss.
7: See you there. Supported by Disha Premium, travel partner, Home and Away Holidays, exclusive charity partner, Good.
5: For store bookings, call 07803-240580
7: or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
8: हमारी रक्षक है वो।
9: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट।
8: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है?
9: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन,
8: समझो
9: ना। द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमाज फ्राइडे 25th सितंबर। फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम।
10: Southall Travel की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। Southall Travel का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल Southall Travel ऑन 0208-574-8410, दैट्स 857।

0: discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
1: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
2: The buy is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
0: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
3: Dubai is the place. 11,
0: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your
4: meeting. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk.
5: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
6: Very good afternoon to you, Leica Gold or Leica Radio Midland. Bhai, aap sun rahe hain Manoranjan Karyakram Leica Radio Network ke in stations par, in frequencies par. क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है तो बता दें भाई, इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मैच शुरू होने लगा है। श्रीलंका टूर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड चूज टू बैट। पहला वनडे इंटरनेशनल खेला जाएगा। स्कोर के आंकड़े हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमें पता है हमारे श्रोताओं की दिलचस्पी फिल्मों में है, गीतों में है, तो क्रिकेट में भी है। और भाई बता दें आपको कि इंडिया टूर ऑफ जापान, भारत की टीम जापान जाकर के जापानियों के साथ क्रिकेट खेल रही है। आप ये मत समझिएगा भाई टीम नई है तो प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। साहब इंडिया के 4 खिलाड़ी आउट कर दिए उन्होंने लेकिन ये T20 मुकाबला था, पर इंडिया ने 5 ओवर में ही समेट दिया। भाई इंडिया वॉन बाई 2 रन्स। मतलब क्रिकेट नहीं खेलना, आंख बिचोली खेलेंगे। नहीं भाई, जापान की टीम नहीं है इसलिए प्रदर्शन ऐसा, लेकिन देखते जाइए आगे आगे। वैसे खेलों में भाई इंडियन वुमेन ने धमाल किया है, कमाल किया है, उन्होंने श्रीलंका को हरा करके एशियन कप पर कब्जा किया है। वुमेन्स क्रिकेट कॉम्पिटिशन एंड इंडिया वुमेन वॉन बाई 147 रन।

0: वाले सॉन्ग शैलेंद्र सिंह और कंचन गा रहे थे ये गीत भाई पुरानी फिल्म रफू चक्कर का गीत था ये और इसी बीच भाई हमारी रेगुलर लिसनर ने एक ये क्या जोक भेजा है हिना जी ने क्या क्या कह रही हैं कह रही हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे एक लड़की को घसीट के स्कूल में ले जा रहे थे तो बुजुर्ग ने रोका रहे बच्चे छोड़ दो इसे भाई अगर इसको पढ़ना होगा तो ये खुद स्कूल जाएगी लड़के बोले पढ़ना होगा ये स्टूडेंट नहीं है हमारी मैडम है स्कूल आती नहीं है दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती है होता है स्कूल से इतना डरते क्यों बच्चे भाई तुम तो शौक से जाते थे ये बात और है कि बीच में भाग आते थे एक बच्चे को ना भाई स्कूल ले जा रहे तो रो रहा जोर से उसको कहते हैं ऐसे चिल्लाता है बचा लो मुझे मेरी मम्मी मुझे स्कूल छोड़ दे जा रही है आगे देख सामने से कसाई आ रहा बकरे को लेकर बकरा मैं कर रहा तो पूछता है मम्मी ये इस बकरे को कहाँ ले जा रहे हैं बोले इसे बेटा ये कसाई है इसको ले जा रहा है अपने अपनी शॉप पर इसको जिबा करने के लिए अच्छा मैंने सोचा इसे स्कूल लेके जा रहे हैं बताइए कर लो बात छोड़िए क्या रखा है सच्ची बातों में
1: दिस इज लाइक अ रेडियो This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor. Actor Aftab Shivdasani. Playback singer Amantrika. And singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping ka perfect destination. Kanish Idols ab available hai sabhi Falcon stores par. Onam Sandhya ke liye pre-bookings bhi shuru ho chuki hai. Falcon Snacks 300 grams ki full range sirf £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds sirf 13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams sirf £1.99 each ya 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg sirf £29.96. S Motiram Namkeen ab sirf 99p se shuru. Aur Herdsman Butter Ghee 20 kg sirf £10.99.
3: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE1 2JU and 2A Rollout Sale Leicester LE5 4UN.
4: Dubai is an opportunity. So now be a part of it. Create wealth. With a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. To trade, visit heraldplastic.com.
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.

0: Mabster nu pani puri ane pani puri no pani.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Next, Gold Afternoons with Bally Brambat on Leica Radio Midlands.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: और लीजिए साहब कार्यक्रम को समेटने का समय हुआ जाता है लेकिन उससे पहले स्वीटी कालड़ा जी आज के प्रोग्राम में कौन सा गीत आपको पसंद आया लिखा है कि बहुत अच्छा गीत था अरे था अच्छा मतलब वो आप ही के लिए लगाया था मैंने ये नहीं याद आ रहा है कौन सा था मतलब जो भी था बिल्कुल आपके नाम और डॉक्टर कालड़ा के नाम भाई दोनों को आपसे मिले हुए बहुत अरसा हो गया है बस जब आपके मैसेज आते हैं ये ख्यालों में मुलाकात होती बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर साहब भी लिखते रहते हैं थैंक यू वेरी मच राजेंद्र राज जी जिंदगी का हर मूड हमारी मर्जी का नहीं होता कभी वक्त रास्ते चुनता है तो कभी हालात मंजिल बदल देते हैं क्या बात थैंक यू वेरी मच और आप क्या लिखते हैं जी अर्जुन जी सो नाइस ऑफ यू और भाई सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद दोहराते हुए कार्यक्रम को समेटते हुए चलें इजाजत लें आपसे नहीं अभी क्यों पूरे पैसे लेते हो मिस्टर शर्मा तो इसलिए पूरे समय तक रुको भाई लोग आते हैं कभी रास्ते बदल जाते हैं कभी मंजिल बदल दी जाती है हालात के द्वारा लेकिन ये आना जाना तो लगा ही रहता है पर जाते कहाँ हैं कहाँ जा रहे हैं शर्मा जी क्यों बताएं कहाँ जा रहे हैं हिम्मत है तो ढूंढ के दिखाओ

हम तुझे ढूंढ लेंगे। ढूंढने की जरूरत क्या है, बस जरा सा कलर हटा करके दिल में झांकेंगे और आपको पाएंगे। तो बहन भाइयों, दुआ करते हैं आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली में रहें या अहमदाबाद रहें। रवि शर्मा को अनुमति दीजिए, बाली भाई का स्वागत कीजिए। मिलते हैं कल 10 बजे की खबरों के बाद। बाय बाय।

0: अब मुश्किल से ये गाना मेरे को इतना पसंद है, लेकिन तीन दिन पहले ये गाना ऑलरेडी हम सुना चुके हैं, तो दूसरा गाना आएगा।
1: This is Leica Radio across the Midlands.

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड आनंद बख्शी का कॉम्बिनेशन सूरज और चंदा 1973 और क्या गाया, क्या एक्सप्रेशंस रफी साहब के। मनु भाई आपकी नजर।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: आपका नया स्टेशन Lyca Radio Ghazals बहुत जल्द आ रहा है.
3: Lyca Radio Punjabi, Lyca Gold 2, now available on the Lyca Radio mobile app and Alexa.

0: पैमी सिंह जी थैंक यू वेरी मच. यू नो अबाउट रंजीता कौर, इन्होंने कहा कि रंजीता की विलेज है मीठापुर डिस्ट्रिक्ट जलंधर, वो जलंधर के हैं और इसके विलेज में अपने पैमी जी के दोस्त है वो जर्मनी में, वो भी वहाँ से ही है. इनकी फादर दैट इज़ रंजीता के फादर आर्मी में थे और जब से फिल्मों में गई तो सब विलेज में यू नो क्या ऑर्थोडॉक्स पीपल होते हैं वो लोग चिल्लाना चिल्लाना शुरू कर दिया और ये सब हुआ. तो ये है बैकग्राउंड ऑफ द रंजीता देयर. थैंक यू वेरी मच. ये सत्ते पे सत्ता, यू नो शी वॉज इन अ व्हील चेयर अपोजिट अमिताभ बच्चन एंड क्या एक्टिंग किया इस फिल्म के अंदर. She was really fabulous.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
0: And आपको एक और बात भी कह दूं कि 2019 में headlines आ गई, newspaper में headlines आ गई. Headlines ये थी कि राज मसंद, उनके husband, he approached Koregaon Park police station. क्योंकि ये लोग, आपको तो मालूम है कि 1990 में एक फिल्म जो थी दैट वाज गुनाहों का देवता, उसके बाद रंजीता अमेरिका चली गई उसके फैमिली और बच्चे के साथ, हस्बैंड और बच्चे के साथ, एंड देन दे स्टार्टेड रनिंग बिजनेस देयर विद लॉट्स ऑफ 7-11 बिजनेसेस. अभी वो वापस जब आई 15 साल के बाद, तो उसके बाद उसने वापस लाने वाले थे सचिन. सचिन वॉज द मैन हु ब्रॉट अ बैक सेइंग के मैंने अखियों के झरोखों से का मैंने सीक्वल बनाना है, तो सीक्वल बनाने के लिए यू प्लीज कम बैक. तो उसको मना लिया एंड शी केम बैक इनटू द फिल्म्स एंड शी डिड सचिन के साथ एक दूसरी उसने फिल्म की एंड री यूनाइटेड इन 2011. कौन सा था, जाना पहचाना, वो फिल्म का सीक्वल था अखियों के जरों खोसे का. एंड देन उसके बाद मिठुन के साथ भी 2008 में शी हैड डन अ फिल्म विच गॉट रिलीज इन 2012, दैट वाज जिंदगी तेरे नाम, दैट वाज शॉट इन 2008 लेकिन 4 साल के बाद रिलीज हुई. बट ये जो हादसा हुआ जब वो अमेरिका से वापस आ गई सचिन के कहने पे और उसने एक्टिंग शुरू कर दिया, तो उसके हस्बैंड तो कोरेगांव पार्क एक पुलिस स्टेशन है इन पुणे, वो कंप्लेन करने गए कि रंजीता एंड हर सन दैट्स आवर सन स्काई फिजिकली अब्यूजिंग हिम एंड थ्रेटनिंग हिम ड्यूरिंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट. अभी आर्ग्यूमेंट क्या थी, आर्ग्यूमेंट क्या थी कि बेटे ने पैसा मांगा डैडी से और कहा कि मुझे बिजनेस खोलना है, एंड राज मसन द फादर ही रिफ्यूज टू गिव द सन मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस. उसमें फिर क्या हुआ कि वो पुलिस का कंप्लेंट हुआ, वो 3 दिन कहीं और होटल या क्लब में रहने लगा और पुलिस ने फिर सब मामला ठंडा कर दिया, वो लोग फिर सुलह कर दिया, सुलह कराई और 3 दिन के बाद वापस पेपर में आया कि एवरीथिंग इज ओके, हमने सब सॉर्ट आउट कर दिया है. मतलब शायद बेटे को पैसा दे दिया होगा और कुछ ना कुछ, मतलब इट वॉज नॉट अबाउट के ओ हस्बैंड वॉज एंग्री बिकॉज इसका अफेयर चल रहा है कहीं पे, ये सब कुछ था ही नहीं. हीटेड आर्ग्यूमेंट इन द फैमिली, जब बेटे ने पैसा मांगा इन्होंने ना बोला, तो माँ बेटे ने या हीटेड आर्ग्यूमेंट में धक्का मुक्की हो गई, तो वो पुलिस स्टेशन पहुँच गया. ये बात थी, पर ये बातें आपको बाली ब्रह्मट से मिल सकती है, विकिपीडिया में नहीं है ना.
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Well, each currency equivalent to one sterling pound, US dollars 1.3365, Indian rupees 127.69, Afghan Afghanis 86.61, Pakistani rupees 370.38, Kenyan shillings 173.06, and Mauritian rupees 63.68.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LIKER. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKER Radio.
0: Gold is currently trading at £104.34 per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278. LIKER Radio, part of the largest Asian commercial radio network in the UK. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Jaimin Foods, the authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: This part of the show is brought to you by Anupama every day at 7:30 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, LIKER Radio.
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting. We'll be right back.

0: अखियों के झरोखों से 1978। दूसरा गाना है पति पत्नी और वो, महेंद्र कपूर और सुषमा श्रेष्ठा ने गाया है। हमने रंजीता कौर को हैप्पी बर्थडे कहा आज, कैसा लगा ट्रिब्यूट आपको? व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी एंड यूबिक्विटस फेस, दैट इज सेवन फेशियल एक्सप्रेशंस, यूबिक्विटस फेस ऑफ रंजीता।
1: This is Leica.
2: ठंडे ठंडे पानी से

करते रहना. अब आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैपेंस टू बी नन अदर देन कविता कृष्णमूर्ति. एंड यस, शी इज कमिंग ओवर टू लंदन. लेट मी टेल यू अबाउट इट इन अ कपल ऑफ seconds.

0: बड़ा ब्यूटीफुल पावरफुल वॉइस ऑफ मोहम्मद अजीज एंड अनुराधा पोडवाल बीवी हो तो ऐसी 1988 का गाना फूल गुलाब का एवरग्रीन आई होप यू एंजॉयड टुडेज ट्रिब्यूट एंड द शो एंड नेक्स्ट इज काजल यस काजल इज कमिंग नेक्स्ट विद ड्राइव टाइम सबर कीजिएगा And on Laika Radio Midlands is Raj Patan.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
2: The Laika Radio Network is now also streaming live on the Nation Player app. Download on iOS and Android mobile devices. Are you listening? Laika Radio is now available across Wolverhampton on DAB.
0: Bali Brahmbhatt ka namaskar. Leaving you with Rafi Saab, Shailendra Singh, Asha Bhosle. Film Suhaag, 1979 ki. Kajal come next with Drive Time. And on Laika Radio Midlands, it's Raj Patan. Kal tak ke liye. इजाजत

0: our basmati rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: जब लड़की के सर पे बाप का साया ना हो तो वो माँ का ही रास्ता अपनाती है. इसे हमेशा याद रखना.
2: काश कोई आ जाए.
3: Catch the brand new show, Sayoni, starts Wednesday the 23rd of September at 6 p.m. on Star Plus and watch anytime on Jio Hotstar.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: Yeh hai Leica Gold.

0: listening with Radio Wally. Leica Radio. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app or log on to leicaradio.com and listen via the website. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
1: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का Perfect Destination Kanish Idols अब available हैं सभी Falcon Stores पर. ओनम संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kgs सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99 piece से शुरू. और Herdsman Butter Ghee 20 kgs sir 10.99.
2: Falcon Cash and Carry 82A Size 10 Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Sale Leicester LE54UN.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोड्रोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
0: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: हमारी रक्षक है वो.
5: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
6: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
5: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
7: सेलिब्रेट दिवाली एट द आइकॉनिक रॉयल अल्बर्ट हॉल.
8: जॉइन लेजेंडरी सिंगर कविता कृष्णा मूर्ति
7: लाइव ऑन संडे द 1st ऑफ November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
0: Save the date. Leica Radio brings you our first ever New Year's Eve bash. Leicester, 31st of December.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
10: Four beers, please, garçon!
9: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
0: From Sutton Coldfield to Handsworth, Leica Radio is now broadcasting throughout Birmingham on full-scale DAB. This is Leica Radio Midlands.
11: Leica Radio.
0: Pay close attention and name the film of this cracker classic.

0: East Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough.
4: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows. Bollywood romantic hits throughout the